0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: एकतरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 7:06।
1: बॉलीवुड।

0: What a way to kickstart your day. One of my favorite songs, Epitilla with Dilnu right here on Big 106.2.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Yeah, new age artist के बारे में सुनकर लगता है कि नहीं यार, मतलब काफी सारा ऑटो ट्यून वगैरह यूज करते होंगे स्टेज पे, असली आवाज में गा रहे हैं या -1 पे गा रहे हैं, ट्रैक बज रहा है, क्या हो रहा है, नहीं, बट नॉट एपी टिल्लो. बिकॉज़ यू सीन दैट कपिल शर्मा एपिसोड, माय गॉड, ही सैंग लाइक द अनप्लग्ड वर्जन ऑफ हिज सॉन्ग्स एंड इट वॉज जस्ट मेसमराइजिंग. ऑन दैट नोट, चलो भी शुरू हो गया. इट्स वेंसडे मॉर्निंग एंड बुधवार के बुद्धू, सब इकट्ठा हो जाओ. 29th of July, क्या हाल चाल? देयर समथिंग अमेजिंग दैट यू गॉट प्लान्ड, कुछ समथिंग लुक फॉरवर्ड टू इन दिस डे, देन यू कैन ऑलवेज शेयर इट विद मी. 054-309-1062. That's my WhatsApp number. Coming up in just a while. Hi, Tera Star hai. Raghav Juyal ki ye latest film, jo ki kal release hone wali hai. 30th of July, you'll find a few shows. Hi, Tera Star. Isse Aankhon Se Tune 2.0 coming up in just a while. In case there's a song that gets you up and running, recharge karta hai aapki batteries, to share kijiye mere saath 054-309-1062. Ek pura ghanta of the early morning requests are right here on Big 106.2.

0: 105.2. The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
7: Wow, your hair color looks stunning.
8: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
7: Yeah, right.
8: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
7: Really?
8: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
7: I'm buying it right now.
8: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
9: InsuranceMarket.ae. Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, InsuranceMarket.ae.
0: Big

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: गुड मॉर्निंग, साबित कर रहा 24 मिनट हल्के फुल्के इधर उधर बादल आपको जरूर दिखेंगे, बट मोस्टली इट्स अ सनी स्टार्ट दिस वेडनेसडे मॉर्निंग। 35 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी क्वाइट हाई 71% पर, विंड्स ब्लोइंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, हाईज ऑफ 39, लोज ऑफ 34 डिग्रीज।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: नाम है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: सो व्हाट डू वी नो पार्टनर्स।

0: कहीं कहीं पर खाबों की प्राइसेस तो आपको मिल रही हैं, खाबों के लेवल्स पहुंच चुके हैं. एवरीबॉडी इज टॉकिंग, ऑल व्हाट्सएप ग्रुप्स, मोस्ट ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड रेट्स दीस डेज.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: क्योंकि क्या है ना कि जैसे 500 के नीचे गोल्ड रेट जाते हैं, एवरीबॉडी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट इट हियर इन द यूएई. एक तो ये गोल्ड रेट्स और दूसरा इंडियन रुपी एक्सचेंज रेट 26 का आंकड़ा आजकल लगा हुआ है. बट लेट्स टॉक अबाउट द गोल्ड रेट. सबसे पहले 24 कैरेट 1 ग्राम सोना क्लोजिंग कल हुई 485 दिरहम्स फॉर 1 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड. एक वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोना आपको पड़ता 449 दिरहम्स में. एक्सचेंज रेट्स फॉर द यूएई दिरहम, इंडियन रुपी 26.26, पाकिस्तानी रुपी 75.68, बांग्लादेशी टाका 33.65.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 8:07।
1: Bollywood.

0: यार क्या हो गया आजकल क्रिएटिविटी को यार, कि दम दमादन का भी रीबूट फ्रॉम पति पत्नी और वो दो
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: बट आई थिंक द मोस्ट क्रिएटिव थिंग दैट केम आउट ऑफ द प्रोटेस्ट वाज वास्ते गुना हुईया. नोबडी नोज व्हाट इट मींस. जस्ट हैव लाइक अ हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट ऑफ वेयर इट कुड हैव कम फ्रॉम. बट दीपेंद्र श्री हुडा ने तो हद ही कर दी. उन्होंने पार्लियामेंट में इसको यूज कर लिया. दिस नारा हैज नाउ रीच्ड द पार्लियामेंट. जेन जी के प्रोटेस्ट करने की तरीके को की तारीफ करते हुए इन्होंने कहा,
2: जिनके जवान पे शहीद आजम भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा था, और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुईया. एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुईया. आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च करें,
0: वास्ते गुना हुईया. Now listen, I'm not Gen Z, I'm millennial, and I think that it's not appropriate to use वास्ते गुना हुईया in the parliament. I don't think दीपेंद्र जी को पता था कि कहाँ से आया हुआ है ये. But any Gen Z listening to me right now or anybody who has an idea of what this actually means, वास्ते गुना हुईया, give me a call 800-1062. Do you think it is parliamentary? 800-1062 पे कॉल करो यार. Talking about non-creative songs, Oye Oye का भी 2.0 version आ गया, रंग दे लाल. But it's a very creative version of it because it is from Dhurandhar. This is the Big Breakfast with me. Sid, good morning.

0: आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
1: नमस्ते।
2: ओला।
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: बोंजूर।
4: नी हाओ।
3: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेनजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। नो स्क्रोलिंग, विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
5: Wow, your hair color looks stunning.
6: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
5: Yeah, right.
6: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia free and enriched with henna extract and argan oil.
5: Really?
6: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
5: I'm buying it right now.
6: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big Weather Update. Brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
9: Morning, 8:14 on this Wednesday ki subah, 29th of July, 36 degrees Celsius right now. Mostly sunny start to this day. Humidity at 59%. Highs of 39, lows of 34 degrees.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: Silky feelings.
1: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
2: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
3: Big 106.2

0: ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार कि मतलब हिस्ट्री क्रिएट हो गई कॉमनवेल्थ गेम्स में, लेकिन रेडियो की तरफ से कोई शाबाशी आई नहीं।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट में हम लोग अच्छा करते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, आर यू वॉचिंग? ऑफकोर्स अ वेरी स्ट्रिप डाउन वर्जन ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स। सिर्फ 125 एथलीट्स ही इंडिया ने भेजे हैं बिकॉज द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स ऑल्सो वेरी वेरी लेस। शूटिंग नहीं है दिस टाइम, बट वी बीन डूइंग वेल इन वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू वन द गोल्ड मेडल आउट देयर। एंड लास्ट नाइट यूएई टाइम हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड बिकॉज गुलवीर सिंह बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द 10,000 मीटर्स का फाइनल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स प्लेड एट ग्लासगो। यार 10K अमेजिंग लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग अच्छा करने लगे हैं एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट बिकॉज यू नो केनिया के ट्रेडिशनली वेरी स्ट्रॉन्ग अफ्रीकन नेशंस के रनर्स उसमें थे एंड ही बीट देम वन द सिल्वर मेडल। ऑल्दो द गोल्ड वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एंड द ब्रॉन्ज वॉज आइल ऑफ मैन के एक जो खिलाड़ी थे, बट गुलवीर सिंह विनिंग अ सिल्वर एट द कॉमनवेल्थ गेम्स, ग्रेट साइन फॉर थिंग्स टू कम। इवन इन द हाई जंप जैसे स्पोर्ट्स में भी एथलेटिक्स में भी अच्छा करने लगे हैं, वन अ सिल्वर इन द हाई जंप एज वेल। सो लॉट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ एथलेटिक्स। सिर्फ क्रिकेट को थोड़ी फॉलो करते हैं हम लोग यार। हाँ, लेकिन बॉलीवुड को पूरा फॉलो करते हैं कुछ देर में कमिंग अप द बिग बॉलीवुड क्विज। आज एक बड़ा बर्थडे है। दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड। गुड मॉर्निंग।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 9:07
1: 6.2 The Beat of Bollywood

0: episode's called Angadai from Pati Patni aur Wo To. Aur kuch log aise hote hain, you will agree with me, ki they kind of attract chumbak ki tarah, magnet ki tarah, they attract drama and controversy in their lives. Aise hi ek bande, one of our favorites ka aaj birthday hai.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: 29th of July, kaun se Bollywood ke maha abhineta? बड़े बॉलीवुड स्टार का आज बर्थडे 29th ऑफ जुलाई. कौन है ये, इनकी आवाज सुन के आपको पहचानना. एक और कंट्रोवर्सी इनके लाइफ में हो गई थी रिसेंटली. ही वाज नरेटिंग अबाउट दिस इंसिडेंट, राइट? आई मीन इट्स अनबिलीवेबल. ये सुन के आपको वही फीलिंग होगी जब न्यूज़पेपर को पता चलता है कि 2 मिलियन दिरहम 25 मिलियन दिरहम किसी ने जीत लिए. एग्जैक्टली वही इमोशन आपको होगा ये सुनकर.
2: मुझे अचानक फोन आ गया था पुलिस स्टेशन से कि मैं आपसे आके मिल सकता हूँ. तो मैंने बोला यार ये क्या नया है अभी. तो मैंने बोला सर, बोले नहीं घबराइए मत, कुछ अच्छी चीज़ है. तो फिर आइए. तो आए तो बोले कि एक लेडी गुजर गई है और ये पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने आपके नाम कर दिया. तो मैंने देखा तो साउथ बॉम्बे में उनकी बिल्डिंग्स थी ये वो, और टोटल प्रॉपर्टी 150 करोड़ की होगी. तो मैंने बोला देखिए मैं वो लेडी को जानता नहीं हूँ लेकिन मेरी फैन होगी. मैंने बोला वो मेरा हक नहीं बनता. तो मैंने वो प्रॉपर्टी वापस फैमिली को लौटा दी इन अ कंडीशन कि इट शुड बी यूज्ड प्रॉपर्ली.
0: एक बार के लिए तो ये कहानी सुनकर हर किसी के माइंड में आता है कि सब तबीयत ठीक तो है सर, आपने ये जो किया सोच समझ. बट या ये बहुत ही अमेजिंग काम किसने किया, उनका आज बर्थडे है. आवाज सुन के आप पहचान गए होंगे, ही इज वन ऑफ आर फेवरेट्स. ऑल दो इज एंटायर लाइफ इज बीन सो एनगल्फ्ड इन कंट्रोवर्सी की इनकी लाइफ पर भी एक बायोपिक बनी थी इन 2018. दैट्स अ क्लू फॉर यू. एक और क्लू अगर आपको चाहिए तो ये रहा. इनकी एक रीसेंट हिट का ये गाना कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. आज किसका बर्थडे, विच बॉलीवुड बर्थडे, किसका बॉलीवुड बर्थडे आज है? इफ यू नो द करेक्ट आंसर, गिव मी अ कॉल राइट नाउ 800-1062 800-1062 टू विन टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज.

0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: नमस्ते।
4: ओला।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: बोंजूर।
6: नी हाओ।
5: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
7: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
8: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: Big Weather Update. Brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
9: Good morning, 9:13 on this 29th of July. It is a partly sunny start to this Wednesday morning. 37 degrees Celsius right now, humidity at 52%, highs of 39, lows of 34, feels more like 42 degrees.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: कैसा लगेगा? How do you feel if your name is Sid and you wake up every day at 5 a.m. and then 9:30 बजे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं wake up Sid. अरे भाई, read the room. It's been 4.5 hours कि मैं wake up हो गया हूँ. आप अपनी सुनाइए ना.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: On the phone line, I've got Adnan bhai with me. Good morning. क्या हाल चाल है? वेरी वेरी गुड यार. कैन यू गिव मी अ वस्ते गुना हुई है? कोई रीजन है कि आपने पहले वस्ते गुना नहीं लगाया? लाइक लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन कि यार ये कहाँ से आया, वस्ते गुना हुई है. आपने सुना कि नहीं, पार्लियामेंट में भी एक पॉलिटिशियन ने इसको रेज कर लिया. तारीफ कर रहे थे वो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स की कि जेंजी के लोग मतलब कितने कितने प्यार से प्रोटेस्ट करते हैं, नारे लगाने की जगह कहते हैं वस्ते गुना. बट ऑब्वियसली यू डिडंट नो. या आपने वायरल रील तो देखी होगी.
2: या
0: है ना, एक और बार बोलो ना, अच्छा लग रहा है आपके आपके आवाज में. ऑफिस में ठीक है यार, मतलब कैबिन में होंगे ना आप, तो अकाउंट्स वाले हो.
2: जी जी बिल्कुल.
0: ऐसा क्यों होता है कि ऑफिस में अगर कैबिन मिलता है तो एक तो बॉस को दूसरे अकाउंट्स वाले को, व्हाई? आई मीन ऐसा क्या चल रहा होता है आपके कैबिन में?
2: सीक्रेट्स होते हैं ना अकाउंट्स.
0: सीक्रेट्स, ऑल द सीक्रेट, कीपर ऑफ सीक्रेट्स मिस्टर अदनान विद मी ऑन द फोन लाइन. तो क्योंकि आप अकाउंट्स हैंडल करते हैं, एक बॉलीवुड के भाई साहब हैं जिनसे एक अकाउंट हैंडल नहीं हुआ, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी एक फैन उनके लिए छोड़ के चल बसी, एंड देन ही वॉज वेरी टेम्प्टेड आई एम श्योर, बट ही हैड टू रिटर्न, ही यू नो रिटर्न दैट प्रॉपर्टी. किसकी मैं बात कर रहा हूँ? हु विच बॉलीवुड स्टार सेलिब्रेट्स हिज 67th बर्थडे टुडे?
2: या आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट संजय दत्त.
0: संजय दत्त, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बोले, तो सही जवाब दिया आपने. कॉन्ग्रेचुलेशन, 2 ओपन मूवी टिकट्स आपने जीत ली. कितने बड़े संजय दत्त के फैन हैं आप? संजय दत्त मूवी, तो आपका जवाब क्या होगा?
2: आई थिंक लक में भी उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन वो शायद साइड रोल में आए थे.
0: क्या, कौन सी मूवी? लक. भाई जबरदस्त आंसर है यार ये. दिस इज आई वाज एक्सपेक्टिंग अ मुन्ना भाई और वास्तव या
2: मुन्ना भाई, तो वो तो फिर आउट.
0: पर आपने लक कहा भाई, मतलब जो ये सब फिल्में अवॉइड करके लक बोले ना, आपने प्रूव कर दिया कि आप एक बहुत ही बड़े संजू बाबा फैन है यार. सो अगर यू डिजर्व करता है ये पासेस, तो आप अदनान, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग पार्ट इन आवर कॉन्टेस्ट एंड एंजॉय योरसेल्फ एट द मूवीज. या आप जाकर कोई भी मूवी देख सकते हो कभी भी, जब भी आपका मन करे
2: देख सकते हो.
0: सॉरी, अरे भाई कोई भी मूवी. मुझे लग रहा है अदनान तक विश्वास ही नहीं हो रहा. यू गेट अ कॉल फ्रॉम आवर फ्रंट डेस्क, दे विल टेल यू कि आपको कैसे करेक्ट करना है. लेकिन जाते जाते एक बार हो जाए वास्ते गुना हुई है
2: भैया.
0: अदनान, आई एम योर फैन ब्रो. Thanks very much. Take care.
2: Thank you so much.
0: Adnan, हमारे आज के विनर हैं. Don't forget, रोज सुबह a chance for you to flex your Bollywood muscle and walk away with 2 open movie tickets in the Big Bollywood Quiz.
1: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: यू नो नोटिस समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि यहाँ यूएई में जब भी मैं कोई ट्रैफिक अपडेट देता हूँ एंड तकरीबन कुछ दो हफ्ते तीन हफ्ते तक एक एरिया का मैं मेंशन करता हूँ, द नेक्स्ट थिंग आई नो आफ्टर दैट पीरियड इज के इम्प्रूवमेंट हो गया है वहाँ पर.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट, देयर इज वन टैगलाइन दैट द यूएई डिजर्व्स इज कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट. चीजें यहाँ पर और अच्छी होती रहती है, ऑलरेडी इट्स लाइक यू नो अमेजिंग, बट वन एग्जाम्पल दैट इट सेट्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द फैक्ट दैट कॉन्स्टेंट improving, constant learning, how can we be better, how can we be better. And the most recent example of this is Russell Khore Road. 20% say road efficiency has improved on Russell Khore Road. That's what the RTA has said. Improvements wahan par chal rahe, road improvements, shorter journeys during peak hours is what you can expect out there. And it's all thanks to a new lane. Ek naya lane jo add kiya gaya hai going towards Alkhel Road, going towards 44 from Russell Khore. Every time there's a traffic update, I always mention about E44, Alkhel Road, Russell Khore. And this extends, extra lane hai. It extends from Financial Center Street to the intersection of Alkhel Road southbound. So, south jaate hue Financial Center Street intersections to Alkhel Road southbound. And it's been widened. ये तीन से बढ़ाकर lanes हो गए हैं, 4, increasing its capacity by 33%. मुबारक हो. This is the Big Breakfast with me, Sid. Such a

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: The biggest pizza deal of the season is here. UAE, get ready for Papa John's Mega Week. For 1 week only, from the 29th of July to the 4th of August, buy one large or medium pizza and get another free. Same value, double the pizza. It's the ultimate pizza sale you don't want to miss. Available on the Papa John's app, plus dine-in and takeaway. Don't wait. Download the Papa John's app. Mega Week, 1 week only. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
3: नमस्ते,
4: ओला,
3: अस्सलाम वालेकुम,
5: बोंजूर,
6: नी हाओ।
7: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, नो स्ट्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।
8: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें, सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल, जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
1: Big 106.2. That's My Song by E-And.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 10:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: यार जिस चीज को करने में इंटरेस्ट है उसको बेफिक्र होके करते रहो। फल की ना सोच वाली बात, सबसे लेटेस्ट एग्जांपल इसका है सारांश जैन।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, बड़खुरदार सारांश जैन विल बी सेलिब्रेटिंग इन हिज होम इन एमपी प्लेस फॉर मध्य प्रदेश एंड हीज बीन परफॉर्मिंग सो कंसिस्टेंटली वेल दैट हीज फाइनली गॉट द नॉड टू प्ले फॉर इंडिया टू मैच सीरीज टेस्ट सीरीज श्रीलंका में खेलने के लिए। सारांश जैन, नाउ here's what the fairy tale story is. He's not a youngster, he's 33 years old and he's been at it for the past 11 years. 11 saal se wo khel rahe hain MP ke liye, consistently perform kar rahe hain, and he's been announced as the replacement for Washington Sundar, jo ki selection ke liye unavailable hain, unko injury ho gayi. So opportunity beckons for Saransh Jain, and if he does manage to make a debut, then he's going to be one of the oldest ever to make their debut for India in a test match. The oldest person to make a debut was at 40. C. Ramaswamy made debut against England all the way back in 1936. 40 साल की उम्र में, आजकल तो it is unthinkable. And उसके बाद I think when players like Sachin etc. came out, Vaibhav Suryavanshi, अब सब youngsters की बात करें, 15-16 साल में लोग debut कर रहे हैं, and यहाँ पर there's a 33-year-old who might make a debut. I am really rooting. This is one reason that I'm really going to be watching the India-Sri Lanka test series. Yeah, Saransh Jain, he's a bowler, predominantly spin bowler, who can bat also. He bats at an average of over 50 in domestic cricket. कुछ देर में coming up बादशाह का ये गाना शहर की लड़की। This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning.
1: Big.

0: 93.2 The Beat of Bollywood. Great news, Ajman! A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward plus exclusive member discounts. Safir Market, more choices, more savings, more reasons to shop. Listen to her every day.
1: Mugambo, khush hua.
2: I think meri mummy ke baad agar koi meri awaaz sun ke itna khush hua hai, that is Vicky. Vicky, thank you so much.
3: Hey, you're all there. Seriously, I'm so happy. मतलब मैं इतना ज्यादा खुश हूँ, बता नहीं सकता सच में.
2: How sweet.
3: आपसे बात हो गई है यार.
2: Hi Vicky, you are making me feel so nice. मैं बहुत खुश हूँ कि आपसे मेरी बात हो रही है. You very sweet.
3: But I'm so happy यार, छोड़ो सारी चीजें, मेरी आपसे बात हो गई. अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था भाई कभी बात नहीं होगी आपसे.
2: क्यों, मैं
3: ईमेल पे ट्राई किया,
2: टोल फ्री नंबर है.
3: अरे वो भी मिला है, वो भी बन रहा है, मतलब कि वो कोई पिकअप नहीं कर रहा और वॉइस मेल पे इतना फुल है, वो बोल रहा है कि आप मैसेज नहीं सेंड कर सकते, भाई मैनेजर रहने दे
2: यार. आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मैं आपको खुद कॉल करती हूँ 106.2 बिग एफएम पे. इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है मुझसे बात करने की, मैं तो यहाँ रहती हूँ शाम को.
3: और सीरियसली वैसे मुझे लगता है मेरा बैलेंस कम है, अब मैं बैलेंस पे बैलेंस भी कर रहा हूँ, बैलेंस भी ज्यादा है, कॉल पे भी वो बोल रहे हैं.
2: आज तक कोई लड़का मुझसे बात करके इतना एक्साइटेड नहीं हुआ जितना विकी हुआ है, मुझे बहुत मजा आ रहा है.
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
4: It is 10:26 on the clock. Let's take a look first at the superstar of traffic this morning, 66, which is Dubai Alain Road. Up now, aapko traffic milega northbound, and this is going towards E11. That entire stretch from Al Jadaf onwards is quite chock-a-block. Yahan par aapko milegi at least 5-6 minute ki der. Iske alawa, there's Al Jaflia area is getting a bit congested. Al Karama mein aapko traffic milega. Then there's E11, 311 heading south going towards Dubai from Sharjah. Usual hotspots pe wahi 5-5 minute ki der at both arteries. In case you spot something, give me a call, 800-1062.
0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
5: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना. जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया.

0: Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ae.
1: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
2: 10:40, let's take a look sabse pehle at 311. You'll find congestion at साउथबाउंड वर्का वन की तरफ ज्यादा वो ट्रैफिक एस यू क्रॉस सिटी सेंटर मिर्दिफ, यहाँ पर एक इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड अराउंड नादलामार्ट, सो बी केयरफुल आउट देयर, बी माइंडफुल ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट. ऑल्सो देयर इज कपल ऑफ इंसिडेंट्स बीइंग रिपोर्टेड यूनिवर्सिटी सिटी ऑफ शारजा, S116 मलिया स्ट्रीट गोइंग टूवर्ड्स 611. यू फाइंड 4-5 मिनट की देर वहां पर भी. देन देयर इज द यूजुअल 311 पर अलनादर इंटरचेंज 1 हेडिंग साउथ गोइंग टूवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा, एंड 66 पर अभी भी काफी ट्रैफिक, एंड दिस इज गोइंग टूवर्ड्स E11 heading north Dubai Alain Road par. In case you spot something, give me a call, 800-1062.
1: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

लेकिन डोंट फॉरगेट इफ यू नीड अ कार रेंटल एनी टाइम सिया फ्रॉम सेल्फ ड्राइव इज अवेलेबल 24/7 एंड इवन अंडरस्टैंड्स 40 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग जेन ज़ी टेक्सटिंग सो सर्च चूज बुक योर परफेक्ट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स ट्राई सिया टुडे selfdrive.ae पर दैट selfdrive.ae ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू बी ड्राइविंग आउट ऑफ द स्टूडियोज एंड विल सी यू दिस आफ्टरनून जस्ट लाइक एवरी आफ्टरनून 1 to 5 ऑन द बिग मिक्स आज हम संजू बाबा का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है 1 full hour आफ्टर 3 PM एंड लॉट्स यू कैन एक्सपेक्ट ऑन दैट show. Don't forget to follow us on socials. We are 106.2 Big FM for all the masti mazak behind the scenes, some poll questions out there and things for you to interact with on a daily basis. Saath mein, I'm Sid Seth, SIDSETH till 1 PM. Then enjoy the rest of your 2 ghante mein toh mil raha hoon. Bye bye.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड, बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग बाय ई एंड।

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, GoChat के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। Big 106.2

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: 2 या 4?
3: 4।
4: कब तक वापस लड़ेगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
4: 4 या 5? 5।
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको ही बांटे हैं, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून 1:07।
1: Bollywood.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: गुड आफ्टरनून, मोस्टली सनी विद 43 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज अक्रॉस द यूएई, ह्यूमिडिटी एट 50-55%।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट alras.me। बिग 106.2 Big 106.2

0: निकले, बहुत हो गया पिछले
1: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
2: Great news, Ajman. A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward plus exclusive member discounts. Safir Market, more choices, more savings, more reasons to shop.
3: Listen to her every day.
4: Mugambo! खुश हुआ.
5: लोगों का ये मानना है कि जब वो किसी डेट के साथ जाते हैं, किसी को इम्प्रेस करने जाते हैं, अगर होता भी है खाना बच जाता है, वो लेफ्ट ओवर्स घर नहीं लेकर जाते हैं, बिकॉज दे थिंक कि इम्प्रेशन खराब होगा. राइट नाउ आई गॉट परीन विद मी एंड आप डेट पे गए किसी लड़की के साथ, आप दोनों ने खाना ऑर्डर करा एंड खाना बच गया, तो क्या आप उसे पैक करा के लेके जाओगे या फिर आप सोचोगे कि नहीं नहीं मुझे इसको इम्प्रेस करना है तो मैं पैक नहीं कराऊंगा.
6: अच्छा मैम, आई एम फ्रॉम अ गुजराती फैमिली, तो मेरा तो अरेंज मैरिज हुआ है.
5: आपने बोला आप प्रमुख गुजराती फैमिली में, तभी समझ गए लेफ्ट ओवर का एक्स्ट्रा पापड़ भी ले जाएंगे.
6: मैम पापड़ तो ठीक है, सॉस भी नहीं
5: छोड़ा.
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
7: Things are pretty much under control traffic wise. ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है ट्रैफिक के मामले में. थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो चुका है हेडिंग नॉर्थ गोइंग टूवर्ड्स शारजा फ्रॉम दुबई, स्पेशली E11 पर अराउंड ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट यू फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन. D78 पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक, 75 ऑल्सो शेख राशिद स्ट्रीट गोइंग टूवर्ड्स दुबई फ्रेम यू फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन, एंड ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स बिजनेस बे फ्रॉम D3 अभी भी 3-4 मिनट की देर आपको मिलने वाली है. इन केस यू स्पॉट समथिंग गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.
1: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. This is The Big Mix on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आप बहुत सारा टाइम स्क्रोलिंग पे बिता देते हैं, इफ स्पेंड टू मच ऑफ टाइम स्क्रोलिंग जस्ट टू फाइंड द राइट रेंटल कार, नॉट एनी मोर. मीट सिया, सेल्फ ड्राइव का एआई कार रेंटल असिस्टेंट. जस्ट टाइप योर बजट, कार टाइप कौन सी चाहिए, कोई प्रेफरेंस अगर आपके हैं, एंड सिया इंस्टेंटली रिकमेंड्स द राइट कार. नो एंडलेस स्क्रोलिंग, जस्ट अ क्विक एंड ईजी बुकिंग. विजिट कीजिए सेल्फ ड्राइव.ae. दैट्स सेल्फ ड्राइव.ae टुडे.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 2:07।
1: बॉलीवुड।

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: If there's one film that's really dividing everybody, it is Ramayan. मतलब एक तरफ हर कोई इंतजार भी कर रहा है कि यार ये सबसे महंगा स्पेक्टिकल कैसा होने वाला है. दूसरी तरफ all the promos and the teasers and the trailers and all of that देखकर जब वो borrowed from Hollywood वाली फील आती है ना, तो nothing is more disappointing, right? But हाँ, ये one of those films यार वन टाइम वॉच तो करना ही पड़ेगा ना, देखनी तो पड़ेगी ही. बट ये तो हमने आदि पुरुष के लिए भी कहा था. बट इन बिग न्यूज क्या हो रहा है इज द फैक्ट दैट द म्यूजिक राइट्स, रामायण की म्यूजिक राइट्स हैव बीन सोल्ड फॉर गेस हाउ मच. एक गेस तो कीजिए, 75 crores में द रामायण की म्यूजिक राइट्स हैव बीन सोल्ड. या द फिल्म दैट स्टार्स रणबीर कपूर, यश, एंड रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट 75 crores का ये डील हैज बीन ब्रोकर्ड एंड बीन डिस्क्राइब द बिगेस्ट ऑडियो डील फॉर अ हिंदी फिल्म. इससे पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने ज्यादा पैसे सिर्फ म्यूजिक राइट्स के लिए दिए गए हों. मतलब ट्रेलर हैजंट इवन फुली अराइव्ड, अभी तक ट्रेलर पूरी तरह से आया भी नहीं है, एंड रामायण इज ऑलरेडी डूइंग ब्लॉकबस्टर अकाउंटिंग. दैट्स हाउ बिग दिस फिल्म इज. एंड अभी तक सुनते हैं कि इस दिवाली ये फिल्म आने वाली है. वेरी एप्ट, 8th of November इज वेन वी आर हियरिंग दैट जो पहला इंस्टॉलमेंट है इट इज प्लान फॉर दिस दिवाली एंड देन पार्ट टू will release next Diwali 2027 mein. Dekhte hain bhai aage kya hota hai. This is the Big Mix with me, Sid.

0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: This is The Big Mix with me, Sid, and one thing that Bollywood really loves to serve up is a bit of confusion. Confusion ho gaya tha is baat ko lekar ke Ramayan, jo film jiska har koi intezaar kar raha hai, is saal Diwali ka part 1 release hai and part 2 releases next year Diwali. Bhai, iska trailer kab aayega? Kab se wait kar rahe hain yaar, lekin Nitish Tiwari ka jo Ramayan hai, starring Ranbir Kapoor, Sai Pallavi, Yash, originally it was expected 24th of July ko, lekin wo aaya hi nahi. 24 जुलाई आकर चली गई, ट्रेलर आया ही नहीं. क्या ठाकुर जी को बहुत बुलाया, तू आता ही नहीं. अब कंफर्म कर दिया है कुछ रिलायबल, अगेन रिलायबल सोर्सेज से ये पता चला है कि दिस ट्रेलर इज नाउ डेफिनेटली गोना बी रिलीज्ड टुमारो. या ये पोस्टपोनमेंट क्यों हुआ, क्योंकि रिपोर्ट्स लिंक द डिले टू द फिल्म्स बिगर इंटरनेशनल रोल आउट प्लान, क्योंकि सोनी पिक्चर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन है, बिकॉज इतना बड़ा बजट, lots of people's money is involved and that is why lots of people have lots of say. So yeah, it is a bit of a khichdi out there. So kafi zyada permissions leni padti hongi, right? Just imagine yaar. So finally the trailer is going to be out tomorrow. How excited are you about Ramayan ka trailer popping up on your feed? That's going to be our poll question for today. आपने अगर फॉलो नहीं किया हमें तो प्लीज करिए 106.2 बिग एफएम, दैट्स आवर इंस्टा हैंडल 106.2 बिग एफएम, वहां पर जाइए एंड यू फाइंड लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट आउट देयर. दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून 3:07।
1: बॉलीवुड।

0: This is The Big Mix with me, Sid, all the way till 5 o'clock. And what is this a big mix of? It is a mix of films and food every weekday afternoon, 1 to 5 till the 14th of August. And aaj Bollywood ki duniya mein, what is the big talking point is the fact that aaj Sanjay Dutt ka janamdin hai, Sanjay Dutt ka birthday hai, right? So let's celebrate via the beat of Bollywood. Do you have a favorite Sanjay Dutt movie? क्या कोई ऐसी फिल्म है दैट क्वालिफाइज एज योर ऑल टाइम फेवरेट बिकॉज इट्स बीन सच अ लॉन्ग करियर राइट सो अगर मुझसे पूछें आप डेफिनेटली मेरी फेवरेट इज दिस वन
1: वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की आदत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या
0: मुन्ना भाई MBBS एक के गाने से टाइटल ट्रैक से शुरुआत करते हैं संजय दत्त के बर्थडे सेलिब्रेशंस की देयर इज अ सॉन्ग दैट यू वांट टू रिक्वेस्ट ऑन दिस डे यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप टू मी 054-309-1062 दिस इज बिग 106.2 अ पार्ट ऑफ द फनी एशिया नेटवर्क

0: Where's your next adventure taking you? Live streaming from a safari trip? Posting pictures from a trekking adventure? Or FaceTiming your family from a remote island? Whatever your adventure looks like, there's a data and calling plan made for you. With Roam Like Home, use your local data and minutes abroad, starting from just 100 dirhams. Roam Like Home with Freedom Plans. To subscribe, visit the E&UAE app or our website. T's and C's apply. E&. Go for more.
1: Namaste.
2: Hola.
1: Assalamualaikum.
3: Bonjour.
4: Ni hao.
3: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
5: Listen to her every day.
6: Mugembo! खुश हुआ।
7: लोगों का ये मानना है कि जब वो किसी डेट के साथ जाते हैं, किसी को इम्प्रेस करने जाते हैं, अगर होता भी है खाना बच जाता है, वो लेफ्टओवर्स घर नहीं लेकर जाते हैं, बिकॉज़ दे थिंक कि इम्प्रेशन खराब होगा। राइट नाउ आई गॉट परीन विद मी एंड आप डेट पे गए किसी लड़की के साथ, आप दोनों ने खाना ऑर्डर करा एंड खाना बच गया, तो क्या आप उसे पैक करा के लेके जाओगे या फिर आप सोचोगे कि नहीं नहीं मुझे इसको इम्प्रेस करना है तो मैं पैक नहीं कराऊंगा।
8: अच्छा मैम, आई एम फ्रॉम अ गुजराती फैमिली, तो मेरा तो अरेंज मैरिज हुआ है।
7: आपने बोला आप लोग गुजराती फैमिली में, तभी समझ गए लेफ्ट ओवर का एक्स्ट्रा पापड़ भी ले जाएंगे।
8: मैम पापड़ तो ठीक है, सॉस भी नहीं छोड़ी।
9: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. This is The Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
10: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
11: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
9: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
12: Good afternoon. 44 degrees Celsius on average across the UAE. Humidity at around 50-55% right now.
9: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

इट इज संजय दत्त बर्थडे टुडे एंड लास्ट टाइम मैंने आपसे एक सवाल तो क्या एक चिंगारी छोड़ दी थी कि विच हैव बीन द मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जिनकी लाइफ पे बायोपिक बनाई गई हो एंड द आंसर इज अपार्ट फ्रॉम संजय दत्त There's not been a single like mainstream ki main baat kar raha hu. There have been a few incidents of not so mainstream. Of course, Silk Smita keh lijiye unke life par bani hui hai. You know what I'm talking about. Silk Smita inspired the Dirty Picture. Then there was Shakila and all these people. Lekin mainstream ki jahan tak baat hai, Sanjay Dutt is the only one. 2018 mein Sanju made by Rajkumar Kirani. It was film that got mixed reviews. Lekin ek to ye biopic ka topic hi बहुत ज़्यादा इट्स वेरी डिफिकल्ट. बॉलीवुड हार्डली गेट्स अ बायोपिक राइट, बट मीना कुमारी की लाइफ इतनी ड्रामेटिक है, लेंस इटसेल्फ टू अ बॉलीवुड फिल्म. लेकिन बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं ओवर द इयर्स एंड एक नया प्रोजेक्ट है कॉल्ड कमल और मीना एंड दैट्स बीन रिपोर्टेड. स्क्रिप्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लेटर्स डायरी एंट्रीज, बट ये अभी तक रिलीज फिल्म नहीं है. मधुबाला की बायोपिक ये इट कीप्स surfacing every couple of months you'll find some new stories about this. Recently casting rumors bhi the, lekin again no concrete mainstream biopic news yet. And Bollywood's favorite biopic that has never been made is a Guru Dutt biopic. Rumors Vicky Kaushal is going to play Guru Dutt, ye sab sirf rumor hain. Smoke Without Fire, पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पर, but no again concrete news, nothing released as of now. चल बहुत कुछ रहा है for a long time. But yeah, which Bollywood actor you think should have or deserves a biopic? I'm going to ask you on our Insta 106.2 Big FM. That's our handle on Instagram. This is The Big Mix with me, Sid.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून द टाइम राइट नाउ 4:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: गुड आफ्टरनून। ऑन एन एवरेज 43 डिग्रीज सेल्सियस अक्रॉस द यूएई, 50 से 55% पे ह्यूमिडिटी। दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2 बे।

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: 105.2 The Beat of Bollywood.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
0: Missed your morning buzz? Yes or no?
3: Can you give me a vaste kona ho ye? Koi reason hai ki aapne pehle vaste kona nahi lagaya? Like lots of confusion ki yaar ye kahan se aaya vaste kona ho ye? Aapne suna ki nahi hai parliament mein bhi ek politician ne isko raise kar liya hai. Tareef kar rahe the wo CJP ke protesters ki ki Gen Z ke log matlab kitne pyar se protest karte hain. Nare lagane ki jagah kehte hain vaste kona. But obviously you didn't know. वायरल रील तो देखी होगी है ना?
4: जी जी बिल्कुल.
3: ऐसा क्यों होता है कि ऑफिस में अगर कैबिन मिलता है तो एक तो बॉस को दूसरे अकाउंट्स वाले को? व्हाई? आई मीन ऐसा क्या चल रहा होता है आपके कैबिन में?
4: सीक्रेट्स
3: ऑल द सीक्रेट कीपर ऑफ सीक्रेट्स मिस्टर अदनान विद मी ऑन द फोन लाइन. तो क्योंकि आप अकाउंट हैंडल करते हैं, एक बॉलीवुड के भाई साहब हैं जिनसे एक अकाउंट हैंडल नहीं हुआ, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी एक फैन उनके लिए छोड़ के चल बसी, एंड देन ही वॉज वेरी टेम्प्टेड आई एम श्योर, बट ही हैड टू रिटर्न, ही यू नो रिटर्न दैट प्रॉपर्टी. किसकी मैं बात कर रहा हूँ? विच बॉलीवुड स्टार सेलिब्रेट्स हिज 67th बर्थडे टुडे?
4: आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट संजय दत्त.
3: एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बोले. तो सही जवाब.
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट with Sid only on Big 106.2 The Beat of Bollywood. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: Good afternoon. Lots of northbound traffic already. You'll find at 311 E11 heading towards Sharjah from Dubai. Kya jaldi chhoot gaya public aaj? Matlab at least 5-6 minute ki der aapko milne wali hai both these arteries par. Also Sheikh Zayed Road going towards Trade Center roundabout is getting busy, and then D78 par bhi aapko traffic milne wala hai, and 611 par a bit of southbound traffic unusual for this time of the day heading towards Alavir. In case you spot something, if it's safe to call me on 800-1062.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. Big 106.2. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.
5: Salaam le jata hua, udan khatola, aur beam bajati hui.

0: Big. Big 106.2.
1: और इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए. इट्स टाइम फॉर मी टू से गुडबाय टू यू. लेकिन मिलूंगा आपसे कल सुबह एक बार फिर. डोंट फॉरगेट 7 to 11 ऑन वीकडे मॉर्निंग. दैट्स अ शो दैट गेट्स यू अप एंड रनिंग. दैट्स अ परफेक्ट वे टू स्टार्ट योर डे. इट्स कॉल्ड द बिग ब्रेकफास्ट. सो आई विल सी यू इन जस्ट अ फ्यू आवर्स. बट 14 आवर्स के बाद तो एक बार फिर से मिल रहे हैं 7 टू 11 कल सुबह. बट इन द मीनवाइल डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस इफ यू डोंट ऑलरेडी. 106.2 बिग एफएम, दैट्स आवर इंस्टाग्राम हैंडल. वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. लॉट्स ऑफ इंटरटेनमेंट, पोल्स दैट यू कैन टेक पार्ट इन, लॉट्स ऑफ बिहाइंड द सीन्स एक्शन आउट देयर. आई एम सिड सेठ, SID SETH, टेकिंग योर लीव. टिल टुमारो, एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर वेंसडे. बाय बाय.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun.
1: Come on, come on.
0: Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
2: Good evening. This is the Big Thrill. Mansi and barish ho rahi hai. Yahan nahi ho rahi Media City mein. Maine 15 minute pehle dekha tha. But bahut barish hai in Sharjah is water. Maine Instagram pe dekha hai. मुझे बताओ बारिश हो रही है नहीं हो रही है? ये गर्मियों वाली बारिश मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है. इनफैक्ट मैं चाहती भी नहीं हूँ कि बारिश हो, क्योंकि अभी मैं नॉर्मल सड़कों पे थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चला रही हूँ. बारिश हो जाएगी तो मेरा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा. व्हाइल यू आर आउट एंड अबाउट हेडिंग होम, घर जाते जाते हम यहाँ पे महफिल जमाते हैं, गाने गाते हैं विद द कारियोकी, और बारिश का माहौल है तो आज कुछ बारिश वाले गाने गाएंगे. फिलहाल सारी डिटेल्स कमिंग अप. किक स्टार्टिंग द शो विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। हां जी, द टाइम राइट नाउ 5:06।
2: Bollywood.

0: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: 5:16, I'm sure आप घर के लिए निकल चुके हैं every single evening, 5 to 6 while you're heading back home. यहाँ पे हम करते हैं karaoke, आवाज आपकी, audience मेरी. अगर आपका talent सिर्फ bathroom singing तक है तो platform यहाँ पे आपको हर शाम मिलता है. In fact, जैसे ही बारिश होती है दो चीजें बहुत ही popular हैं, एक तो सबकी Instagram stories and दूसरा बारिश वाले गाने. तो बस आज एक बारिश वाला ही गाना है. दो media city में फिलहाल बिल्कुल बारिश नहीं है.
1: Karaoke.
2: So, आज शाम का ट्रैक है

अगर आपने गेस कर लिया है, विच आई एम श्योर कर लिया है, 800-1062 इज द नंबर टू डायल. इट्स टाइम फॉर द कैरियोकी राइट हियर ऑन बिग 106.2, कीपिंग यू कंपनी अंटिल 9. मैं हूं मानसी.

0: 106.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
6: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: Alright, not really big but patchy traffic. अगर आप शेख मोहम्मद बिन ज़ायद पे 18 से 20 मिनट का डिले, there's heavy traffic नादलहमर फेस्टिवल सिटी साइड, also slow moving near रिगा, डेरा, करामा, उदमेथा. फिलहाल 15 मिनट का डिले ऑन शेख जायद एंड देर इज सम ट्रैफिक गोइंग टुवर्ड्स मोरिस सिटी. एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर.
6: Sia, self-drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
8: पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना. जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया.

0: याद है व्हेन वी वर किड्स, इमरान हाशमी का गाना अगर टीवी पे आता था तो मम्मी या तो टीवी बंद कर देती थी, चैनल चेंज कर देती थी, या हमें बोलती थी कि बच्चे ये गाने नहीं देखते। टॉक्सिक द फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स के दोनों जो गाने हैं, पहले वाले ने तो तबाही मचाई है विद कियारा आडवाणी, दूसरा गाना भी विद तारा सुतारिया। इमरान हाशमी ने अर्ली 2000s में कुछ नहीं किया है जो इन दोनों गानों में आप देखेंगे, बट आई हैव टू से आई कांट वेट फॉर दिस मूवी।
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: सबसे महंगी मूवी सो फार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के से कहा जा रहा है, 1000 करोड़ जो है इस मूवी पे इन्वेस्ट हुए हैं। पोस्टपोन होते होते फाइनली 26 अगस्त को 26th ऑफ अगस्त को ये मूवी रिलीज होगी। एंड ऑफ कोर्स देयर्स कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया विद ऑफ कोर्स यश, माय लेटेस्ट क्रश। हाँ पता है मुझे उसकी शादी हो गई है। फिलहाल यहाँ पे वी ऑल्सो कैरियोकिंग, आई एम सो डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा था कि बारिश वाला गाना है, फोन भी आए, बट सबने गलत गाना पहचाना। दिस इज नॉट भीगी भीगी रातों में, दिस इज दैट आइकॉनिक बारिश का गाना, अमिताभ बच्चन, मौसमी चैटर्जी। मुझे लगा था दिस इज गोना बी अ पीस ऑफ केक।

0: हम सबकी मॉनसून प्लेलिस्ट का हिस्सा है ये गाना। नॉट भीगी भीगी रातों में, इफ यू गेस द ट्रैक एंड इफ यू वांट टू सिंग दिस ट्रैक, karaoke करना चाहते हो आप, 800-1062 इज द नंबर टू डायल।
1: Beat 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Wednesday evening, while you're heading back home, the mausam is though barish wala, but I don't know barish kahan ho rahi hai. And we are karaokeing. I've got Harsh. Hi Harsh, how are you?
2: I'm doing well, how are you?
1: Good, barish ho rahi hai, nahi ho rahi hai? Instagram pe to log aise stories dal rahe hai ki pata nahi kahan barish ho rahi hai.
2: Nahi, filhal to nahi ho rahi hai, hum Sharjah se aa rahe hai.
1: ये देखो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है लोग बता रहे हैं कि शारजा में देयर इज हेलस्टोन एंड स्टफ.
2: ओह रियली?
1: या सोशल मीडिया इज मिसलीडिंग गाइस.
2: राइट.
1: फोमो हो रहा था मुझे. आप शारजा से दुबई आ रहे हो?
2: हाँ जी, बस दुबई पहुँचे.
1: वेरी नाइस. तो ये आप रोज करते हैं, शारजा टू दुबई, दुबई टू शारजा?
2: नहीं, आज एक काम था वहाँ पे, इसलिए जाना पड़ा.
1: ओके. फिलहाल हर्ष, गाना वाना गाते हो आप?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं.
1: तो बहुत मजा आएगा. यही तो है प्लेटफॉर्म सभी बाथरूम सिंगर्स के लिए. अपना टैलेंट बाथरूम तक मत रखो, सबको सुनाओ. सबको सुनाओ. इस वक्त जो भी दुबई से शारजा, शारजा से दुबई जा रहा है, हर्ष की आवाज सुनेंगे. राइट हर्ष, बस इतनी कोशिश करना कि लोगों के गाड़ियों के एयर बैग ना खुल जाए. बाकी माइक आपका, प्लेटफॉर्म आपका, ट्रैक भी आपका. हाँ जी.
2: रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, बिगया इस मौसम में लगी ऐसी अगन. रिम झिम गिरे सावन.
1: ओहो, मतलब गाते हो आप बाथरूम में, गाते हो. जो ऊपर वाला सुर जो बाहर गया ना एकदम, वो बाथरूम में ही लग सकता है. बट गाना बिल्कुल सही पहचाना आपने, और गाया भी अच्छा, याद भी आपको ये गाना. आई थिंक दिस इज द परफेक्ट मॉनसून का गाना. दो आई वॉज थिंकिंग के बारिश हो रही है थैंक्स टू इंस्टाग्राम, बट ऑफिशियली तो नहीं हो रही है.
2: Correct.
1: तो ये आप गाते हो पार्टी वार्टी में?
2: के बाद
1: अच्छा, वो वाले सिंगर हो. चलो कोई बात नहीं, दूर नहीं है फ्राइडे. हैव अ ग्रेट इवनिंग. बाय. दिस इज व्हाट वी डू एवरी सिंगल इवनिंग. अगर आपने गाना पहचान लिया एंड यू कैन सिंग दिस सॉन्ग, देन द कैरियोके इज वेटिंग फॉर यू. 800-1062 इज द नंबर टू डायल. कैरियोके. बिग 106.2.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, this is the Big Thrill, Mansi, and every single evening, 5 se 6, chahe aap bathroom singer ho, platform aapko main deti hu to host your concert. Khali khud kyun sunna, sabko sunao, dil ka dard kaano tak lekar aao. But you know, in this particular search of bathroom singers, kabhi kabar bahut professional singers bhi yahan aa jaate hain, jaisa mujhe lag raha hai ki Kishore hain. Hi Kishore, good evening.
2: Hi, good evening.
1: You seem like a professional.
2: No, me, no, not really, no. But let me try.
1: जिस हिसाब से जिस कॉन्फिडेंस से सर आपने मुझे कॉल किया है ना मुझे लग रहा है कि यू आर अ सिंगर सो व्हाट डू यू किशोर
2: वेल आई हैव माय ओन बिजनेस वी आर डीलिंग इन हार्डवेयर
1: वेरी वेरी नाइस सो आई एम अज्यूमिंग यू लव म्यूजिक
2: हां या आई हैव बीन इन यूएई फॉर पास्ट 72 इयर्स
1: 72 इयर्स
2: यस
1: 72 इयर्स
2: या करेक्ट सिंस चाइल्डहुड आई एम हियर
1: सर यू डोंट साउंड लाइक 72
2: या एंड आल्सो आवर फैमिली बीन हियर फॉर पास्ट 200 इयर्स
1: Oh my God, I am talking to someone जिसने ये शहर बनते हुए देखा है literally Dubai.
2: Correct.
1: Wow, True. Sir, it is such a pleasure to talk to you. And I have a very strong feeling कि आप कमाल ही गाओगे. मतलब बहुत ही अच्छा गाने वाले हो. मैं already अपने hopes बहुत high रख के बैठी हूँ. बहुत.
0: Karaoke.

0: वाह, मैंने कहा था ना सर आप अच्छा गाओगे और आपने अच्छा गाया, मतलब लग गए आपके सुर, अब इतने साल का एक्सपीरियंस जो है. अब आपको यहाँ पे 72 इयर्स हो गए हैं तो यहाँ पे तो इतना रिमझिम सावन होता नहीं है, बट अगर मैं आपको याद दिलाऊं 72 इयर्स अगो, प्रोबेबली नॉट 72, से 50 इयर्स अगो, ये गाना आपने फर्स्ट टाइम किसकी याद में सुना था या किसको सुनाया था?
1: अपेंडली माय वाइफ वाज पाकिस्तानी.
0: अच्छा, तो वीर ज़ारा वाली स्टोरी है आपकी.
1: Yeah, well she passed away.
0: Oh, I'm really sorry.
1: Yeah.
0: But it was
1: she passed away around.
0: Such a pleasure talking to you, Kishore ji. You have a great evening. Same. And thank you so much for joining us for the karaoke and any health tips for us, because you don't sound 72. Any morning rituals jo aap karte ho, kuch khate ho subah, to mujhe batana, main bhi khana shuru karungi ki meri awaaz bhi aisi rahe when I'm 72. Thank you, sir.
1: And thanks for the compliment.
0: Thank you so much. You have a great evening.
1: Okay, bye.
0: Bye. This is what we do. We sing and we relax while we're heading back home. Agar aap bhi karaoke karna chahte hain, register kar sakte hain 0543091062 par.

चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, GoChat के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। GoChat ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening. This is The Big Thrill. I am Mansi. And as a fellow Desi, you'll understand we don't really care much about the expiry dates of product. Now, I bought in 2020 so many types of sanitizer, spray, wale, gel, wale, ye, wo, ke, main ek chhoti si dukaan laga sakti hun. Mere office mein logon ko flu ho rakha hai. To aaj main 2-3 lekar aayi. अब मैंने ये रियलाइज़ करा कि वो एक्सपायर हो गया है, तो मुझे लगा नहीं नहीं ठीक है, एक्सपायर्ड भी है तो क्या हुआ, सैनिटाइजर है। अभी चैट जीपीटी ने बताया कि नहीं, उसका असर ख़त्म हो जाता है अगर वो एक्सपायर हो चुका है। दो तो जो है वो 2022 में एक्सपायर हो चुके हैं और सुबह से मैं उन्हें ऐसे यूज़ कर रही हूँ कि हाँ ये मेरे प्रोटेक्शन है फ्रॉम द फ्लू। But I still believe कि sanitizer expire नहीं होता है यार। फिलहाल this hour of the show we're playing the 5-second rule. It's a fun game. आपको मिलता है 5 second. मैं आपको देती हूँ कुछ categories. तीन चीजें आपको बतानी होती हैं 5 second के अंदर। पता है मुझे sounds very very easy. But wait until you play this game. इतना आसान है नहीं। खेलना है तो 800-1062 is the number to dial.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: हाँ जी, द टाइम राइट नाउ 6:08।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. This is The Big Thrill. I'm Mansi. We're playing the 5-second rule. Joining us is Mr. Mukul Chaudhary, who seems to be a very, very serious. Mukul, aap hamesha itne serious rehte hain ki aaj kuch khaas hai?
2: Nahin, main kabhi bhi serious nahin hai.
1: अच्छा, तो मतलब आप बस इतने न्यूट्रल टोन में ही बात करते हो, जब आपको एक्साइटमेंट होता है तब भी आप ऐसे ही बात करते हो?
2: नहीं मैडम, मैं ड्राइव कर रहा हूँ.
1: अरे हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ड्राइविंग के टाइम बिल्कुल भी एक्साइटमेंट शो नहीं करना चाहिए. फिलहाल आप करते हैं क्या है मुकुल?
2: मैं जॉब करता हूँ मैडम, एक प्राइवेट कंपनी में एज ए मैनेजर.
1: तो आप देसी हैं, तो आप प्रोडक्ट की एक्सपायरी में बिलीव करते हैं कि आपको लगता है कि नहीं बस ऐवें ही लिखते हैं?
2: नहीं मैडम, कुछ चीज में मैं सीरियसली ऑब्वे करता हूँ एक्सपायरी डेट, कुछ चीज में चल जाता है मुश्किल नहीं.
1: जैसे ब्रेड?
2: ब्रेड को 100% मैं ओबे करता हूँ.
1: अच्छा, तो किस चीज में ओबे नहीं करते हो?
2: जैसे कोई क्रीम वगैरह है, अगर उस फेस में लगाना है, एक्सपायरी होगा तो पैर में लगा लो.
1: स्मार्ट यूज. मेरे पास बहुत सारे सैनिटाइजर है, एक्सपायर हो गया, मैं क्या करूँ इनका सर?
2: मैडम सैनिटाइजर का तो कुछ नहीं है, आपको नेक्स्ट कोरोना आने तक का वेट करना पड़ेगा.
1: उनका कहा ऐसा मत बोलो यार, मैं फेंक देती हूँ, प्लीज नहीं चाहिए.
2: मेरे पास भी मैडम 2022 का पड़ा हुआ है.
1: नहीं सुनना मुकुल की, प्लीज. वैसे ये साल कैसा जा रहा है आपको और मुझे पता
2: है. मेरे पास तो मास्क कितना सारा पड़ा हुआ है जहाँ से
1: नहीं, मैं तो ऑफिस ले आई थी कि लोगों को फ्लू हो रखा है, तो मैंने सोचा कि मैं हर जगह जो है यूज करूंगी. तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, उसने बोला किसी काम का नहीं है, एक्सपायर हो चुका है. बट नॉनदलेस, जो आपने बोला वो मैं कभी नहीं बोलूंगी. फिलहाल विल प्ले द 5-second रूल, इट्स अ फन गेम. आपको मिलेंगे 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर.
0: 5-second रूल.
3: ओह यस.
1: आज संजू बाबा का बर्थडे है. 3 संजय दत्त की मूवीज. नॉट ए संजय दत्त फैन. हो गया टाइम खत्म सर, 5 सेकंड फटाफट खेलने वाला गेम है. 3 बॉलीवुड के गाने जिनमें दिल आता है, वर्ड दिल.
2: दिल दिल प्यार करे. दिल दीवाना.
1: और टाइम खत्म हो गया है. 3 ऐसी चीजें जो दूध से बनती हैं.
2: मिठाई.
1: सेवई. टाइम भी खत्म हो गया है. हो धीरे धीरे, नहीं फटाफट खेलने वाला गेम है मुकुल, आप बहुत स्लो खेल रहे हो. 3 ऐसी चीजें जो आप घर जाते ही करते हो ऑफिस से.
2: बाथरूम जाना.
1: अरे 5 सेकंड के बाद तो आप जवाब देते हो यार. 3 चीजें जब आप बहुत रोमांटिक होते हो तो बीवी को बोलते हो.
2: आई लव यू. अच्छी हो तुम, अच्छी खाना बनाती.
1: तो कब बोला था ये लास्ट?
2: मैं हर 2-3 दिन में ही बोल देती.
1: अच्छा, झग्गी के रूल है कि नहीं बोलो तो फिर खाने में नमक कम या मिर्ची ज्यादा मिलती है.
0: 5 सेकंड रूल.
2: अच्छा
1: गेम तो आप बिल्कुल अच्छा नहीं खेल पाए, बिल्कुल भी नहीं. 5 सेकंड में एक भी जवाब नहीं दे पाए. बट मैं सच्ची में पूछ रही हूँ, रोज बोलते हो बीवी को 2-3 दिन में कि खाना अच्छा बनाया, चाहे अच्छा ना भी हो?
2: नहीं, खाना मैं भी अच्छा बनाता हूँ मैडम.
1: तो कौन ज्यादा अच्छा बनाता है आपके? वो
2: मुझे तो लगता है मैं.
1: अच्छा, पर उन्हें कभी बताया नहीं आपने कि आप उनसे अच्छा खाना बनाते?
2: खुद भी बोलते.
1: तो खुद बना दिया करो रोज.
2: नहीं रोज पॉसिबल नहीं.
1: अच्छा कोई बात नहीं, चलो
2: तो बना देते, मुश्किल नहीं.
1: यू ड्राइव बैक होम सेफ. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. बाय.
2: ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय.
1: Yeah, 5-second rule. मैंने कहा ना, it sounds very, very easy, but आसान नहीं है. अगर आपने खेलना है तो कॉल करो 800-1062 पर.
0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood. Great news, Ajman. A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward, plus exclusive member discounts. Safir Market. More choices, more savings, more reasons to shop.
4: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
0: The Big Chill.
5: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Missed your morning buzz?
6: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा.
0: Yes or no?
3: Can you give me a वास्ते को ना हो ये? कोई रीजन है कि आपने पहले वस्तेगुना नहीं लगाया? लाइक लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन कि यार ये कहाँ से आया वस्तेगुना हुई है. आपने सुना कि नहीं पार्लियामेंट में भी एक पॉलिटिशियन ने इसको रेज कर लिया है. तारीफ कर रहे थे वो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स की कि जेंजी के लोग मतलब कितने कितने प्यार से प्रोटेस्ट करते हैं, नारे लगाने की जगह कहते हैं वस्तेगुना. बट ऑब्वियसली इट नो वायरल रील तो देखी होगी है ना.
2: जी जी बिल्कुल.
3: ऐसा क्यों होता है कि ऑफिस में अगर कैबिन मिलता है तो एक तो बॉस को दूसरे अकाउंट्स वाले को, व्हाई? आई मीन ऐसा क्या चल रहा होता है आपके कैबिन में?
2: सीक्रेट्स होते हैं ना अकाउंट्स,
3: सीक्रेट्स, ऑल द कीपर ऑफ सीक्रेट्स मिस्टर अदनान विद मी ऑन द फोन लाइन. तो क्योंकि आप अकाउंट्स हैंडल करते हैं, एक बॉलीवुड के भाई साहब हैं जिनसे एक अकाउंट हैंडल नहीं हुआ, 150 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी एक फैन उनके लिए छोड़ के चल बसी, एंड देन ही वॉज वेरी टेम्प्टेड आई एम श्योर, बट ही हैड टू रिटर्न, ही यू नो रिटर्न दैट प्रॉपर्टी. किसकी मैं बात कर रहा हूँ? हु विच बॉलीवुड स्टार सेलिब्रेट्स हिज 67th बर्थडे टुडे?
2: या आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट संजय दत्त.
3: संजय दत्त, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बोले. तो सही जवाब.
0: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट with Sid only on Big 106.2 the beat of Bollywood.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
1: 38 degrees, low drag around 34. फिलहाल humidity है 57% पर.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Hanji, we're playing the 5 second rule. Joining us is Sapna. Hi, Sapna.
2: Hi.
1: How are you?
2: So nice to hear your voice.
1: Hi, you can hear my voice every evening. रोज सुना करो मुझे. पहले मुझे एक बात बताओ, सपना आपका नाम सपना है, कितने सपने जिंदगी के आपके पूरे हो चुके हैं ऑलरेडी?
2: बहुत सारे. इनफैक्ट मैं मरने को तैयार हूँ क्योंकि मेरे काफी सपने पूरे हो गए.
1: ऐसे नहीं बोलते अभी तो और सपने देखो, सपनों की कोई उम्र थोड़ी ना होती है.
2: वो तो है, that's true, I agree.
1: फिलहाल सपना क्या करते हो आप?
2: My work as a sales manager.
1: Oh, very nice, very very nice. Enjoying the job?
2: हाँ. थोड़ा तो बोर हो ही जाते हैं काम करके, बट फिर भी not bad. I'm blessed.
1: Yeah. Grateful. आज के टाइम जॉब है, बी वेरी वेरी ग्रेटफुल. फिलहाल कहाँ जा रहे हो, ट्रैफिक का है?
2: अभी मैं जा रही हूँ अपनी डॉटर के टेनिस लेसन के लिए कुरचान.
1: यार मम्मियाँ जो करती हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह. मेरी मम्मी ने भी इतनी क्लासेस में मुझे भेजा, काम कुछ नहीं है बट यहाँ से वहाँ लेके तो जाती थी.
2: I swear.
1: ये मम्मियाँ ही कर सकती हैं. फिलहाल वी प्ले द 5 second रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 seconds. आई एम गोना गिव यू फ्यू कैटेगरीज. आपने तीन चीजें बतानी है 5 second के अंदर. ऑल द बेस्ट. थ्री बॉलीवुड एक्टर्स जिनका नाम शुरू होता है विद द लेटर एम.
2: मिथुन चक्रवर्ती.
1: हो गया, टाइम खत्म हो गया. मम्मी,
2: ओ गॉड,
1: बेबी बता रहे हैं क्या आपका? क्विकली नेम थ्री फ्रूट्स दैट आर येलो इन कलर.
2: मैंगो.
1: बता रहा है बच्चा, सही बता रहा है. मैंगो बोलो.
2: अच्छा, मैंगो पेयर बनाना.
1: वो सही बता रहा था. मैंगो.
2: मैंगो पेयर बनाना. यस.
1: थ्री संजय दत्त की मूवीज. इट्स हिज बर्थडे. ये पूरी फैमिली खेल रही है क्या?
2: लकी
1: टाइप खत्म हो गया.
2: मुन्ना भाई
1: टाइप खत्म हो गया. जस्ट 5 seconds. फुल फैमिली इज प्लेइंग द गेम. बेटा बोल रहा है मैंगो, हस्बैंड बोल रहे हैं सड़क. अच्छा, तीन चीजें जो आपको मियां साहब की अच्छी नहीं लगती, आप बदलना चाहती हो. अब आएगा मजा.
2: टॉयलेट में बहुत टाइम बैठना और मुझे नैक करना और रात को ठीक से टाइम पे नहीं सोना, बीच बीच में उठ जाना.
1: सिर्फ एक ही जवाब. सपना ने बिना किसी हेल्प के टाइम पे दिया. Only answer that she gave. What is he saying? That I don't nag you.
2: Yeah, he that everybody, every nagger thinks like
1: yeah.
2: that, right?
1: You know what they say about men spending a lot of time in the toilet. Phone leke jaate, nahi leke jaate.
2: Yeah, but even when there was no mobile phones, it was established.
1: हाँ, फिर ठीक है. फिर आपके जो है वो सीधे हैं, क्योंकि जो नए नए फोन लेकर बाथरूम में लंबा टाइम बिताते हैं.
2: डिटेक्टिव बनने का टाइम आता है.
1: सपना, मजा बड़ा आपसे बात करके. खेला आपने तो बिल्कुल फैमिली की हेल्प लेके भी सही नहीं. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू.
2: यू टू. यू हैव अ गुड इवनिंग. थैंक यू. नाइस टू टॉक टू. बाय.
1: ये 5 second रूल आपने खेलना है. एक ही रूल है, कॉल करना है मुझे 800-1062 पर.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Dekho, if you also grew up in a fellow desi household, then we don't believe in product ki expiry date. ना ही हमने आज तक अपनी मम्मी को देखा है कि बस एक्सपायर हो गई है ब्रेड तो फेंक दो. ना ही हमारे घर से कोई भी सामान बेस्ट बिफोर के बाद यूज़ नहीं किया जाता है. हमारा ये परम धर्म है कि एक्सपायरी डेट को हम मानेंगे ही नहीं. वी डिफाई द रूल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्सपायरी. जिसने भी बनाया है उसने काफ़ी मेहनत की होगी, बट उस लॉजिक को वी डोंट बाय. आई थिंक इट लुक्स फाइन, इट स्मेल्स फाइन, then it should be fine. Why are you wasting it? And this is actually a very, very common practice in every desi household. Best before versus use by. Most printed dates are actually peak quality indicators ke best before use kijiye. But ye सेफ्टी डेडलाइंस नहीं होती है. देसी पेरेंट्स को ये समझ में आ चुका है कि अगर ख़राब नहीं हुआ है, जैसे दाल चावल हल्दी, वो ख़राब नहीं होगा अगर जब तक उसका कलर सही है, उसमें से कोई पर्टिकुलर खुशबू नहीं आ रही है, इट्स गुड टू यूज़. सो आई एम गोना आस्क यू दिस क्वेश्चन नाउ एज अ फेलो देसी, कौन सी चीज़ें हैं जिनकी एक्सपायरी आप बिल्कुल नहीं मानते हैं? क्योंकि मेरे पास 5-6 सैनिटाइज़र हैं. मेरे चैट जीपीटी के हिसाब से नहीं, ये एक्सपायर हो गया तो काम नहीं आएगा. बट अब मैं अपनी मम्मी बनती जा रही हूँ तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ ऐवें ही लिखते हैं, ये एक्सपायर नहीं हुआ है, ये मेरे काम आएगा. वी डिस्कसिंग दिस राइट हियर ऑन बिग 106.2, कीपिंग यू कंपनी अंटिल 9. मैं हूं मानसी.
0: बिग

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, इट इज 7:09।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Namaste.
4: Hola.
3: Assalamualaikum.
5: Bonjour.
6: Ni hao.
5: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
1: The Big Chill.
7: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
8: It's Hot It Up with Big Ticket.
9: A guaranteed 20 million dirham grand prize.
8: 500,000 dirham winners and 1 million dirham big spin game.
9: Buy now at bigticket.ae.
10: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
13: इट इज 37 डिग्रीज, लो जाएगा अराउंड 34, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 53% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: You are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: See, if you grew up in Desi household or you're a fellow Desi, we're not very big on expiry dates of the product. And बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी expiry हम मानते ही नहीं हैं. जैसे मैं अपने sanitizer की expiry मानने को ही तैयार नहीं हूँ. I've got Jenny here. Hi, Jenny.
3: Hi, Mansi.
2: How are you, Jenny? It's always such a pleasure. Energy एकदम match होती है हम दोनों की.
3: I know, darling. Superb. I'd love to hear you.
2: How sweet. अच्छा, Jenny, मैं बोल रही थी कि you know, as Desis, we really don't believe in expiry date of प्रोडक्ट्स. हम मानते ही
3: नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं.
2: ऐसी कौन सी चीजें जो बियॉन्ड एक्सपायरी जेनी यूज कर लेती है कि नहीं ये सिर्फ एवं ही लिखा होता है?
3: मैं तो जो बाम भी आता है, आई डोंट थिंक सो एक्सपायरी भी कुछ मैटर करता है. People still use it for, I mean, how many years? Squeeze जब तक खलास नहीं होता है, उसको छोड़ना ही नहीं है उसको.
2: एक्चुअली अ पॉइंट, मैंने तो आज तक चेक ही नहीं करा है कि वो कब एक्सपायर हुआ. आज ना मैं चार पांच सैनिटाइजर लाई, वो सब एक्सपायर हो चुके हैं 2022 में. माय चैट जीपीटी से इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज वो एक्सपायर हो गया, बट आई थिंक इट स्मेल्स लाइक सैनिटाइजर, तो इट्स ओके, इट्स गिविंग मी प्रोटेक्शन.
3: नो, ऑब्वियसली इट हैज अल्कोहल कंटेंट.
2: या
3: कहां जाएगा अल्कोहल कंटेंट अंदर का?
2: यू कांट कन्विंस अ देसी ऑन एक्सपायरी. वी विल नॉट थ्रो द प्रोडक्ट.
3: Absolutely. Love hearing you, Mansi. Superb you are.
2: Thank
3: but I love
2: you.
3: The way you take the audience when they don't answer. Are khalas ho.
2: Very exciting.
3: You are superb. I just love the way you are. 5 seconds khalas ho. Are 5 seconds. But I love it the way you say it. Are khalas ho. 5 seconds.
2: How sweet, Jenny. Thank you so much. But on behalf of all the other desi moms, bread expire होती है कि नहीं होती है?
3: अरे नहीं होती है, खा लो, कुछ नहीं होता है. हमारे Indian immunity बहुत strong है. कुछ नहीं होता.
2: हम लोग ऑनेस्टली, हमारी मम्मियां ब्रेड की एक्सपायरी नहीं मानती. जब तक ब्रेड पे कोई और कलर का कुछ डिजाइन ना बने, वो कहती है ब्रेड सही है, फ्रिज में रखी हुई है.
3: ये तो एक्सपायरी तब समझ में आया जब हम पढ़ने लिखने लगे. जब नहीं पढ़ लिख सकते तो क्या ही समझ में आएगा, मानती.
2: आई एग्री. फेस क्रीम तो जब अगर एक्सपायर होती है, मैं भी पैरों पे लगा के निपटा देती हूँ. तो आई टोटली एग्री.
3: कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ बेस्ट बिफोर का है, उसके बाद तो चलना ही चलना है. बिल
2: देखो, देसीज, वी आर ऑल यूनानिमस व्हेन इट कम्स टू एक्सपायरी डेट. थैंक यू सो मच, जेनी. यू हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग एज ऑलवेज, एंड इट्स सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू.
3: सेम हियर, सेम हियर. बाय, सीडी.

0: going to. The beat of Bollywood.
1: A circuit, अपने कार के एसी की वाट लग गई। एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा? बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना?
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
3: InsurersMarket.ae. What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the MyAlfred app. InsurersMarket.ae.
0: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: Hi, still a 45-minute delay. Sheikh Zayed par bahut hi slow moving traffic at this traffic on the Sheikh Mohammed bin Zayed, the Merdik to Muhesna. Filhal a 36-minute delay. Heavy traffic agar aap Dera Abu Hail Fahidi side hai, it's kind of bumper to bumper. Also slow moving if you are on the Hesse Street, especially if you're going towards Port City. Iske alawa kahin atke ho, batao 800-1062 par.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: बिग सवाल ये है कि अगर आप देसी हो तो क्या आप प्रोडक्ट खाली एक्सपायरी डेट तक ही यूज करते हो? वहां से जवाब आया होगा नहीं, क्या बात कर रहे हो, एक्सपायरी डेट देसी के लिए मैटर ही नहीं करता है ना प्रीतम प्यारे जी?
2: नहीं ऐसा नहीं है, सम प्रोडक्ट्स यस लाइक मेडिसिन ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो दैट, पर अचार हो गई, चावल हो गए, तेल हो गया, घी हो गया, आई मीन व्हाट एक्सपायरी डेट, देमसेल्व्स आर प्रिजर्वेटिव.
1: सी आई डोंट नो, वी लर्न फ्रॉम आवर मदर्स स्पेशली गर्ल्स, जब तक आपके अचार में कुछ और उगने ना लगे मतलब वो अचार सही है तो वो एक्सपायर नहीं हुआ है.
2: इनफैक्ट हमारे घर में तो नानी नाना और दादा दादी तो दो दो साल की अचार होती थी, वो ज्यादा टेस्टी लगती थी.
1: हाँ वो बात तो सही है, वो तो प्रिजर्व ही किया जाता था. ब्रेड का क्या हिसाब है सर आपके घर में, ये मेरा कॉमन क्वेश्चन है सबसे.
2: नहीं ब्रेड एक्सपायर होती है एंड वी हैव फेस्ड इट आल्सो, उसमें फंगल भी आया है एंड माय वाइफ हैज सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट. तो यस ब्रेड इज डेफिनेटली अ नो गो, शी इज आल्सो गेट्स फंगल वेरी फास्ट. So expiry means expiry.
1: तो ये तो यहाँ आके चेंज हुआ होगा आपका थॉट प्रोसेस.
2: डेफिनेटली.
1: क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि इंडिया में कभी होता है कि देख देख देख तुझे ही ऐसी खुशबू आ रही है, सही है खा ले कुछ नहीं होगा.
2: अरे हम छोटे थे तो हमको ये भी नहीं मालूम था कोई चीज एक्सपायर भी होती है.
1: आई नो मतलब पेरेंट्स भी इतने कॉन्फिडेंस से हमें खिला देते थे, हमारी इम्यूनिटी का राज आई थिंक वही है, वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स खाना.
2: इम्यूनिटी का राज वही है एक्चुअली.
1: बट आई थिंक ये कॉमन है, हम देसी मानते ही नहीं है बहुत सारी चीजों की एक्सपायरी. बिस्किट विस्किट नमकीन वमकीन हम सूंघ के टेस्ट करके पहचानते हैं ये सही है या नहीं है.
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही है. यू स्टोर इट आल्सो, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट. क्योंकि अगर आप मिक्सचर को या नमकीन को नॉर्मली स्टोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली
1: इसकी भी कहानी है, मतलब वो एक्सपायर हो गया होगा लेकिन मम्मी ये बोलेगी तुमने डब्बा खुला रखा वो ठीक है, तुमने खराब किया, तो उसका भी लॉजिक होता है मम्मियों का. है ना?
2: डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल.
1: चलो सर यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू सो मच. एंड हाँ मैं भी याद रखूंगी कि ब्रेड और चीज.
2: आपकी लिस्ट बढ़ भी गई होगी और कम भी होगी.
1: मैं सार्डो ब्रेड के साथ तो ये नहीं कर पाऊंगी सर, मैं बहुत ट्रू देसी हूँ, बहुत महंगी आती है, मैं तो जब तक वो खराब नहीं होती मैं खा लेती. हूँ मैं बहुत मिडिल क्लास हूँ उस मामले में, मैं नहीं सार्डो तो नहीं मैं फेंक सकती.
2: Don't think it gets spoiled.
1: Even if it does, I don't care. It's very expensive, so I will finish it. You have a great evening. Thank you so much.
2: Chalo, you too.
1: Bye.
2: Have a good evening. Bye-bye.
0: Big 106.2, Fast Track Song of the Hour. Brought to you by selfdrive.ae.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल।

0: रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: know Dhurandhar was all about Ranveer Singh, but for us, the main entry जब होती है वो होती है संजय दत्त की. आई थिंक हम थिएटर में जाके ये मूवी देख नहीं पाए, बट संजय दत्त की जो फर्स्ट पार्ट में एंट्री हुई है इस गाने के साथ, तो माहौल एकदम बदल गया था. आई थिंक दैट इज द स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ संजू बाबा. एंड टुडे ही टर्न्स 67. वी सेलिब्रेटिंग संजय दत्त हियर. आई डोंट नो एनीवन हु इज नॉट अ फैन ऑफ दत्त साहब. वैसे संजय दत्त अपने फादर को दत्त साहब कहा करते थे, एंड आई थिंक आज की जनरेशन उन्हें दत्त साहब कहती है. Recently is announced a sequel to this iconic movie that I have been always a fan of. Maine itni baar ye movie dekhi hai, and I'm sure jaise hi main ye play karungi, you will guess the movie that I'm talking about.
1: Pallu bhai, aaj 11 October raat ke 2 baje ye log आपके भागने का इंतजार कर रहे हैं.
0: आई थिंक इससे अच्छी मूवी बनी ही नहीं है. या आई एम मेकिंग दैट स्टेटमेंट बिकॉज ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है. अगर आपने गेस कर लिया है संजय दत्त की ये कौन सी मूवी है, विच आई एम श्योर

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2 The beat of Bollywood.
2: Hello.
3: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना। हेलो, सुन रहे हो ना?
4: Hey,

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: 106.2 The Beat of Bollywood.

0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The biggest pizza deal of the season is here. UAE, get ready for Papa John's Mega Week. For 1 week only, from the 29th of July to the 4th of August, buy one large or medium pizza and get another free. Same value, double the pizza. It's the ultimate pizza sale you don't want to miss. Available on the Papa John's app, plus dine-in and takeaway. Don't wait. Download the Papa John's app. Mega Week, 1 week only. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
2: नमस्ते।
3: ओला।
2: अस्सलाम वालेकुम।
3: बोंजूर।
4: नी हाओ।
3: डिड यू नो? नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। यस, इवन इफ यू टाइप इन जेंजी लिंगो। इंट्रोड्यूसिंग सिया, योर एआई असिस्टेंट एट selfdrive.ae। सिया हेल्प्स यू रेंट द राइट कार इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। नो स्क्रोलिंग। विजिट selfdrive.ae। सिया इज वेटिंग टू असिस्ट यू।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: स्टिल 36, लो जाएगा अराउंड 34, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 56% पर।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: Your holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life, or business, call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: All right, today we are celebrating my favorite, I think hum sabke favorite, Sanjay Dutt. And Sanju Baba ki jitni tarif ki jaye kam hai. Right, I've got Farhan with me. Hi Farhan, good evening.
3: Hi Mansi, good evening.
2: So, aap bahut bade fan hai Sanjay Dutt ke.
3: सबका ही हूँ, पूरी बॉलीवुड का फैन.
2: ये देखो, ऐसा थोड़ी ना होता है सर. कहते हैं ना, फ्रेंड ऑफ ऑल इज फ्रेंड ऑफ नन. सो फैन ऑफ ऑल इज फैन ऑफ नन.
3: मोस्ट प्रोबेबली संजय दत्त इज माय फेवरेट.
2: बहुत पर्सनली ले लेती हूँ, आई एम सच अ बिग फैन ऑफ संजू बाबा. मतलब मैं तो उनके पैप्स के साथ वीडियो भी देखती रहती हूँ. दैट्स हाउ मच आई लव हिम.
3: I love him too, but I didn't get a chance to meet him.
2: Even me neither. Me neither. I know. मैं भी नहीं मिल पाई.
3: I tried but couldn't make it. So
2: आपकी फेवरेट कौन सी है मूवी? ऑल टाइम फेवरेट?
3: ऑल टाइम तो मुन्ना भाई MBBS.
2: I still love him in the negative role, चाहे वो वास्तव हो चाहे वो कारतूस हो.
3: इनके जो जितने भी मूवीज हैं जिसमें मोस्टली फाइटिंग वाली है, वो सब I love it.
2: आज भी मतलब संजय दत्त स्क्रीन पर जब आते हैं, मैं अभी धुरंधर की बात कर रही थी, और कोई दिखता ही नहीं.
3: राइट, बिल्कुल ऐसी है. मैं तो धुरंधर 2 का वेट कर रहा था कि कब मैं फुल सीन देखूं, तो अब होपफुली लिस्ट में है तो मैं देखूंगा.
2: आपने अभी तक देखी नहीं धुरंधर 2?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं मैंने देखी, क्योंकि बिजी बहुत हूँ चीजों में. सुबह ऑफिस, ऑफिस से घर.
2: सर, आप में बहुत सेल्फ कंट्रोल है. मैं 3 बार देख चुकी हूँ, जबकि वो ऑलमोस्ट 3.5-4 घंटे की मूवी है. फिलहाल जो मैंने ये जो डायलॉग मैंने सुनाया था, वो कौन सी मूवी से था?
3: खलनायक.
2: एब्सोल्युटली करेक्ट. कितनी बार देखी है?
3: जैकी श्रॉफ जो है वो उसके साथ है. 3 टाइम्स.
2: ना, आप इतने बड़े फैन हो ही नहीं. फिलहाल मैं आपको कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस पूछने वाली अबाउट संजय दत्त. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर. ठीक है, संजय दत्त इज द सन ऑफ वेरी पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर्स. उनके पेरेंट्स का नाम क्या है?
3: सुनील दत्त.
2: एंड उनकी मॉम भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी.
3: नरगिस.
2: सही जवाब. 2012 में एक रीमेक आई थी अग्निपथ की. संजय दत्त ने एक बहुत ही कमाल रोल उसमें भी प्ले करा था, ऑफ द बैड गाय. क्या नाम था उनके कैरेक्टर का?
3: विद ऋतिक रोशन नाम था.
2: कांचा चीना. ओ क्या कैरेक्टर था कांचा चीना भी. 50 तोला 50 तोला, ये डायलॉग किस मूवी से था?
3: ये तो उनका हथियार से है ना.
2: किससे है?
3: नो, हथियार.
2: मैं कह रही हूँ सर, अच्छा फोन पर हो. अगर ये उनके 10 फैन के सामने बोलते ना कि 50 तोला ये जो डायलॉग है ये हथियार से है, तो वो शायद निकाल भी लेते. वास्तव का डायलॉग है. बहुत ही खराब फैन हमारे साथ आए हैं संजू बाबा के, इसलिए शायद संजू बाबा इनसे मिले नहीं. चलो फरहान, यहाँ तो मतलब अब आपकी नॉलेज जीरो है संजय दत्त के बारे में, बट फैन तो फैन होते हैं, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है. चलो फरहान, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. बाय.

0: ऑनेस्टली जब से मैंने ड्राइविंग शुरू की है कुछ लोग लेन्स इसी तरह चेंज करते हैं झूम बराबर झूमते हुए.
1: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Before you come at me and say, oh, you're a new driver, I am a very, very disciplined driver and मैं अपनी लेन में ही रहती हूँ. टाइम पे लेन चेंज करती हूँ बकायदा इंडिकेटर देकर. एंड मुझे शुरू से ही पता होता है मुझे किस लेन में जाना है. एंड आई अज्यूम्ड कि सभी को पता होगा, बट नहीं, लोग लास्ट मोमेंट में रेकलेसली लेन चेंज करते हैं. ये बहुत कॉमन हो गया है. इनफैक्ट इफ यू फॉरगॉटन, बहुत सारे AI कैमराज हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा है, देख रहा है. 400 से 1000 दिरहम के पॉइंट्स, इनफैक्ट फाइन्स आपको मिल सकते हैं एंड 4 ब्लैक पॉइंट्स मिल सकते हैं. बहुत ऐसे लोग हैं, इफ यू आर ऑन द रोड एंड यू फॉलो योर ओन लेन, यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. क्योंकि ये कहीं से भी आ जाते हैं जिंदगी में, मैं सही लेन में चलूँ ना चलूँ, रोड पे आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं सही लेन पहले ही पकड़ लेती हूँ. लास्ट मोमेंट में मैं ऑनेस्टली किसी को परेशान नहीं करती. तो आई थिंक ये सबको ध्यान रखना चाहिए.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से बुलू बुलू करेगी तो धोपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

उसके अब एक और गाना हमारी प्लेलिस्ट में आने वाला है, आवारापन 2 का तेरा मेरा रिश्ता 2। अभी अभी जो है अराउंड 15 से 20 मिनट पहले मैंने ये पोस्ट देखा है कि सिनेमाज में ऑफकोर्स मूवी 14th अगस्त को आने वाली है, बट आई थिंक टुमारो दे आर रिलीजिंग द गाना तेरा मेरा रिश्ता। फिलहाल 2 गाने आ चुके हैं, वन ऑफ देम इज वे जुनून, द अदर वन इज ये आवारापन, बट वेरी एक्साइटेड। आई विश दे रिक्रिएट तो फिर आओ ऑल्सो, बट आई होप दे डू जस्टिस। वैसे आवारापन 2 की रिलीज से पहले इस वीकेंड इंडिया में री रिलीज होने वाली है आवारापन 2007 की आवारापन। ऐसे रूमर्स हैं ऑन सोशल मीडिया के 31 जुलाई, 2 वीक्स प्रायर टू आवारापन 2, विशेष फिल्म्स माइट री रिलीज आवारापन।

0: MC on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: And इसी के साथ time for me now to say goodbye, good night. I'll see you tomorrow. नजर नहीं लगाना चाहती, but finally कुछ दिनों में जुलाई खत्म हो रहा है. Reminds me of March. बहुत लंबा महीना था ये. फिलहाल जाने से पहले बता दूं, अगर आप कोई अपने फेवरेट सॉन्ग्स, कोई गाने सुनना चाहते हैं, देन वेरी वेरी सिंपल, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गेट इन टच विद अस ऑन व्हाट्सएप. वी गॉट बिग अनलिमिटेड फॉर यू, वेयर इन वी प्ले योर फेवरेट म्यूजिक. आप एक मैसेज, एक वॉइस नोट हमें भेज सकते हैं ऑन 0543091062, एंड वी लव टू प्ले योर फेवरेट म्यूजिक. डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स, 106.2 बिग एफएम इट इज. यू कैन से हाय टू मी, आई एम मानसी टॉकिंग, एंड आई विल बी टॉकिंग टू यू टुमॉरो. Have a great evening. Leaving you with

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, that's my song by E.

0: चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, गो चैट के साथ रखिए सब सिंपल, सेफ और इजी। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: पर ये मत भूल।

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग चिल वेयर एवरी सॉन्ग फील्स लाइक अ डीप ब्रेथ आफ्टर अ लॉन्ग डे ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। द बिग जेल brought to you by insurancemarket.ae।
4: insurancemarket.ae।
0: Big 106.2, the beat of Bob.